पाए, गुरु मत किसनो अगले हो वजू भेदो ना खाए, खसने करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए, वजू गवाए अगला मोहिमो पाना खाए, जिस जाता खामना तिसका ही ऐसा बात।

अपनी हरता के पारावा आप कराए साक्षी फिर आप कराए मां एक नकली जंजीर एक तुरी चढ़े बिछिया आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार।

0: रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वास तेरा घर भला
1: तेरे घर आनंद वधाई तुद घर माण महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दसन दास

चेट आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षिया रिया। देग तेग फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले भोलो जी वाहे गुरु भोलो जी। सिखा नु सिखी दान के सदान रहत दान। बाबेग दान विसाह दान भरोसा दान धना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगी अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीवा माती उच्ची मत बत दा रखाप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे माणे नितणियां दे ताणे ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਤਾਨੇ ਤਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਤਾਨੇ ਧੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक कर चिहन यर वरन जात यर पात नहन जेह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साहे सहान गणजैन त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत पै सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सकै को तू कद का ब्रह्मा विष्ण श्रेत अगणत तिनको मोह भया मन मद का चबरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सब हु कौ तद का सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका ज्यों जन हो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गणो असंख अवगण मेरिया असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिया मोह मगन विकराल माया तौ प्रसादी खुलिया लोक करत विकार बिखड़े प्रभ नेरहूते नेरिया विनवंत नानक दया धारो काड भव जल फेरिया लिख कतहे न छूटिया खेन खिन फूलनहार बखसनहार बखसल नानक पार उतार सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सो भाए दर्शन परस आय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सह कुरसह छटिया तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी एक
ओंकार सतगुर प्रसाद राग सोहि बाणी शेख फरीद जी की तप तप लोह लोह हाथ मरोरा बावल होई सो सहलो सह मन मह किया रोस मुझे अवगन सह नाही दोस तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरा बावल होई सो सहलोरा तैसह मन मह किया रोस मुझे अवगन सहनाही दोस तै साहिब की मैं सार ना जानी जो बन खोए पाछ पछतानी रहा काली कोयल तो कित गुण काली अपने प्रीतम के हम बिर है जाली फिर बेहून कत है सुख पाए जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए विदण खूही मुंद एकेली ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रभ साध संग मिली जा फिर देखा

उसियो पर है मार्ग मेरा, सिख फरीदा पंथ समार सवेरा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरा, बावल होई सो सह लोरा। तैसह मन मह किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोष।

लाज रखी हर प्रभ जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सोदा माया पदा तेरा खे आगन का पड़त पूरे ते काज श्री सतगुरु सो प्रसन्न कल युग होए राखा हा

चक्र है जो धूलो काल चक्र सबे नाथ नाथ परम भाव मकरंग कहा राम कृष्ण कहा चंद सूरंग कहा

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना ना जाने मेरा। दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु, डोलन ते राखो प्रभु।

बिखाई माया मोह परम पे फूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत।

मुखी उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

रंग प्रंग अनेक न जापन करत नियंत्र जीव सबकी जान ला सब किस तेरे बस तेरा घर भला।

और दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू जी सब दुख विसारन हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ द मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सांतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट की जान। जब उद करख करा करतार, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कब हों, तुम मैं मिलत देह धर सब हों। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताका

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण सवना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरे घर तां तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कमारिया धुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर।

सोत अपराध करत है जेते, जननी चेतना राखस तेते, रा मैया हों बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगण मेरा, जे अत करोप करे कर ताया, ता पी चीतन राख समाया, चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा, देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, लिख कत है ना छोटी है, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परियारे, दर्शन प्यासी दिन सरात, चित बहु अनदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत, सुख टल गुर सेविए, एहन सुसहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम।

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चल मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजै। जन

माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वट दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत चंगे

तुम ही सजन सुहेले राखो राखण हार दयाला राखो राखण हार दयाला नानक हर के।

0: तर तरिया उदर तर तरिया।
1: सलोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार। सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान। सचा तेरा हुक्म सचा फुरमान। सचा तेरा कर्म सचा निशान। सचे तुदा खेला करोड़ सचा सप्तान सचा सब जोर। सची तेरी सिफत सची सलाह। सची तेरी कुदरत सचे पातशाह। नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
0: वडी वडाई जा वडा नाम वडी वडाई जा सच ने आओ। वडी वडाई जा निचल थाओ वडी वडाई जाने आला। वडी वडाई बुझे सब पाओ वडी वडाई जा पुछ ना दात। वडी वडाई जा पे आप नान कान कथनी जाए। कीता करना सर्ब रजाए महला दूजा।
1: एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विच वास। एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश। एक ना पहने कड ले एक ना माया विच निवास। ए पे आख ना जापई जे किसे आने रास।
0: नान गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास। पौड़ी नानक जी उपाय।

0: नानक सतसंगा सतसंगा।
1: सलोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिरत विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखै हाजरा दूर वेख विडान है विस्माद नानक बुजन पूरे पाग महला पहला।
0: कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सा कुदरत पातालियां कासी कुदरत सर्वे आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जान कुदरत नेकियां कुदरत वदियां कुदरत मानव मान कुदरत पौन पानी बैसंत कुदरत तीखा सब तेरी कुदरत।

ताको ताक पड़ी अपने भोग भोग है होए भसमड़े पावर सदाया वड्डा हो दुनीदार गल संगल काते चलाया के करने की तवची है।

0: नानक मुसै ज्ञान में होनी खाए गया जम काल महला पहला।
1: वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ावा छटे पाए वेखे लोग से कर।

करना चाहिए। जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आख गवाईए, जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनहू नीच सदाइए। जे जरवान पर हर जरवेश करेंदी आइए, को रहना परिये पाइए, को रहना परिये पाइए।

बेवाण लख सुरतन संग्राम रण में छिटे प्राण लख श्रुति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखया आवण जान नानक मति मिथया कर्म सचा नहीं सान पड़ी सचा साहेब।

0: पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती अर्जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ता खड़िया बहु तीर्थ भविया ते तो लव्या बहु पेख किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा फलाया वस्त्र न पहरे न सकरे मोन भी गुता क्यों जागे गुर बिन सुता पग पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पद गवाई बिना में किछ थाई ना पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंदर जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए नानक नदर करे सो पाए आ संदेश तेने केवल हमें शब्द जलाए।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बबी खोप खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो।

तली खाग जमेले तमस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड़िए होए एक मन अलग त्याइए, फालते वे हो पाइए जेवी ही कार कमाइए, जे होवे पूर्व लिखिया था तोड़ते ना दे पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए।

0: दुख दारू सुखरो पे आ जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं ना ही जाहूं करी ना होई। बलेहारी कुदरत सिया तिरंत ना जाई लखिया रहा। जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूर रहया। तू सच्चा साहिब सतसवाले हो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बता जो किश करना सो कर रहया। महला दूजा
1: जोग सबदं ज्ञान सबदं वे सबदं ब्राह्मण है खत्री सबदं सूर सबदं सो

साधना मारिए, जेहा कले कल ना तेवे ना उपचारिए, ऐसी कला ना खेडिए जित दर गए गया हारिए, पढ़िया ते उमिया विचार के विचारिए, मोह चले सो अगे मारिए, मोह चले सो अगे मारिए।

0: जोगत माण्यो।
1: सतजुगत माण्यो छल्यो बल बावन पायो, त्रेते तै माण्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अपै भक्ते जन दियो। कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो।
2: गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन, नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग मान, योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान। सुख दियो परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस नानक घोर, नित नव तन जग शायो।
3: गुण गावे पयाल भगत नगाद पयंग में, महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचार है, ब्रह्मा गुण उचरे जिन कुम सब श्रेष्ठ सवारे। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो।
0: गुण गावे नवनाथ तन गुर साज सुमायो, माता ता गुण रवे जेन चकर वे कहायो। गुण गावे बलराव सपत पताल बसंतो, पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो। दूर बा प्रूरो अंगरे गुर नानक जस गायो, कब काल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो।
4: प्रभ दा तहु दातार परयो जाचक इक सरणा, मिले दान संत रेण जिह लग पौ जल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै, देहो दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावै। बल्यो चिराग अंधियार में सब कल उदरी, इक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म।
5: कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान, कवन

0: तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रहन बास जाको हित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंग्यो बासना तै बाहर पै देखियत धाम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाहीं और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुर भगत कहेत पाए रहे हो मिल राम स्यो।
1: जोत रूप हरिया गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छतर गुर राम महदियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैन।
2: अंत न पावत देव सबे मनो इंद्र महाशिव जोग करी फुन भेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन महेतरी।
3: सत रूप सत नाम सत संतोख तरियोर आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट जोत जगमगै तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सनमुख रहो काल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतरो।
4: श्री गुरु साहिब सभी ऊपर करी कृपा सतयुग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस कमल माथे पर धरियंग अलख रूप जी रख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुरबिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुरबिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन रहना थाप ज्योत जग तारी रहने पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चहु जुग गुर सेवा कर फल रहियं बंदे जो चरण सरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन परनन सतगुर गुरु सेव अलख

पै पुले सोते दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की।

कहू टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। हुवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साह, सिर साहा दैसाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सत

प्रभु छोड़ आन लागा नरक समझिया हो कृपाल दयाल नानक पाओ पंजिया प्रभु छोड़ आन लागा नरक समझिया हो कृपाल दयाल नानक पाओ पंजिया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कोल गर्भत है संचंत विखया छलं छिद्रं नानक बिन हर संग न चालते राग जैत सरी दी वार दी पौड़ी दसवीं श्लोका नाल

0: नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथ बाहो जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझताए सत जुग असंतो का धर्म ग्रथ बाहो त्रेतै रथ जतै का जोर ग्रथ बाहो द्वापर तपै का सत ग्रथ बाहो कल जुग रथ गन का पूर ग्रथ बाहो महला पहला
1: साम कहे सैतंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको ससमावे हरिग

ले आया बिंद्रा बन में रंग किया। कल में बेद उथरबण हुआ ना खुदाई वालो पदा। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे पठानी अमल किया। चारे बेद होए सचया बड़े गणित ने चार विचार। हाओ भगत करनी सदाए ताओ नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु विट्ठल बारे।

दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जने उजी का है ता भांडे कत ना हो टुटे ना मल लगे ना हो जले ना जाए तन सो मन स्नान का जो गल चले भाई चौकड़।

दयाल कृपा करे ता सहकार कुरायसी सौ सेवक सेवा करे जिसनु हुकम बनायसी हुकम बना होवे प्रमाण ता कसमे का महल पाईसी कसमे पावे सो करे मन हो चुदा सो फल पाईसी ता दरगे पैंदा जायसी ता दरगे पैंदा जायसी।

0: पणक देबा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जहित्रंदा महला पहला
1: मांस खाने करी निवाज।

अखी सुतक वेखना परत्रे पर धन रू कनी सुतकन पैल तबारी खाए नानक हंसा आदमी।